नानी बागै फानफुनों नानी बागै बो आसाय फायो हिनि साजागै दङ आबुनो कारिबो दिनिनि हाय सालो बेलेखिनो तंखर सनामनाय ते खरक्सा रिपोर्टर हिनि सिनि जागै बेलेखिनो मुंगनां कृष्णमोहन बंदोपाध्याय निबो दिनिनि हाय सालनो आसायमानि साल हिनि साजागै दङ 1813 बिसिबो ते दिनिनि हाय सालनो मियानि हर फाइसिं हायो अबहाय मियानि मियाव' दिनिनि सालाय मियाव' फियाबा दिनिनि हाय सालनो बिनि अ पुइला बोरै माउन्ट एभारेस्ट कासावै माननाय गोबलाय हिनै सिनिमुं पुइला मानो फियाबा बिनि जे माउन्ट एभारेस्ट ब गोसामानि साल हिंगे फियाबा मिया 23rd मेव फियाबा बिनि अ सिनिमुं मान माने दिनिनि साल ते अबनो कारिब जों नुगजागो दिनिनि सालन लगै आलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तिनि सेंजाक मानि हाइके आसक जरा नरखनाका जिनि तिनिनि सालन रक्सारे रक्सावै कक थाइसाथायनि अजराव जों थांलायने हारपिस न तुयै कगलाम हारपिस न तुयै कगलाम सानानै थांतानि गाइसा ते गाइसा कक सानानि मुजों अजराव हारपिस कायनि अब भाइरास भाइरासनि बागै अंग अ भाइरास बेलेखिनो चाया जों जरा गाइसाव नुगजाकमानि जों एच आई भि नि जे गोबां मा खालायो जों जे फिसारजाकमा नुगमानि फियाबा दाबुनि अजराव गोबां कुक बरगनो हारपिस बाय चप्रब जागै दंमानि नुगजागै दङ फियाबा अ हारपिस बाय जे चप्रब जामानि फियाबा अबहाया जे जतनि न हामिया बखाक फियाबा जेसा हारपिस हारपिस कायनि दङ आ कायनिनि बिसिंग' नायनानै थाखायहिंगे जों सायमानो अ हारपिसनि बिसिंगबो कायनि पार्टनि बिसिंग' जों नुगजागो जे अ कायनि बेमार गाइसा एच एस भि वान ते एच एस भि टु अ कायनिनि बिसिंग' एच एस भि वान फियाबा आसोग वाना मा सिनजाया तबु फानो हारपिस बसागो तुमुंनो हाबै थाखायहिंगे हेंगे हारपिस बेमार आबो बसाकनि सकमलै मानिया जरा गाइसा जरा हामै दंफानो तुमुं आबो किसिसा सोग उथालिजांनाय थेला मानखायहिंगे ब हायनो हाय गिफिलै फायफिरो फियाबा एच एस भि टु अबहिंगे किसिसा किरिमा सिनसा अबहिंगे बेसराहाय उंगै गबतै उंगै आबो फाथैसावै मटकमानि नुगो ते अबो तुमुं न जों साखनाय कलनाय रग बाय नायजायहिंगे अब बेलेखिनो रग खरक्सानि ते खरक्साव अ बेमार स्राबै थाङै मानो हारपिसुंजों बर' रगनि साखर नांमानि ते बिनि इउज खालायजाक तुवालि नांमानि बिसिंतै ते अबुनो कारिब' जों तुमुंनो खरक्सा ते खरक्सा बाय जासमाय दंमानि बिसिंतै फियाबा एच एस भि बेमार एस एस भि टु बेमार मानजाकमानि गोबां कुखाय नुगौ फियाबा केबा केबा अर वान सुगै मानो जासमाय जामानि बिसिंतै न अ बेमार मानजागै मानो हिनै फियाबा अबहाया गाना गाना आचुगै तुमुंनो बसाक नांगै थांखा बा बिनि इउज खायजाक तुवालि रग बा बिनि माने इउज खायजाक अबहाय रग तुमुनो ब इउज खायमानि लगे लगे इउज खालायगायनांगे अबहाय बेमार मानजागै मानो जे बर' रग अबहाय मानजागै बेमार मानजागै दङ सालथाम जरातै ब जे तुवालि बा जेसा मानिफानि इउज खालायखाया तुमुनो बिनि खुगतै

फनो रचार कहेंगे तुम आ वायरस ते खरक जानी सा कथा कहेंगे आबो साल थाम जराते आ वायरस गथांग तंगो आबुनि यागुलो बो साल थाम नि यागुलो हिंगे थई थांगो हिनि मानो जों फियाबा साल थाम जराते ओ वायरस गथांग तंगमानि बागै जों HSV2 तुमुंग नो केबो मानजागै तंखा हिंगे आ बरोबाय किसिसा डिस्टेंस मेंटेन खलाय तंखा हिंगे नो बेलेखिनो जाकुकना अबुनि मेन सिम्टम खा पेसरा हाय खलाय मतकमा नुकमानि याग रगो ते कुबुनि हिजाक थाय रगो जों अबो हाय खलाय नुगो फियाबा HSV1 अबो हिंगे जों याग ते बुखुख रगो नुगो फियाबो अबो आस वानानानि कय बिथि फुलमानि बिसिंदि हामै थाबा बिथि सामानि बिसिंदि जों हामै थामानि नुजागो फियाबा HSV2 अबो हिंगे किसिसा रिस्कि आबोन बागै नरन सानानि मुजुंगो जेसुक मानसाक जानि जा माने युज खालायनानि तामियाके साबो बुफुर तामुं तं साबोनि बिसिंगो बम तामुं तं साइमेनि आबोन बागै जों बुनि तुवालिर बुनि मानिर युज खाया जेसुक तंगै मानो बुनि तै बुतलनि तै नङिया जेसुक तंगै मानो आसुं जिनि बागै खाम आइके आसु जरा जों खाना लायके साखाम ग्रायनि कगो हारफिसनो तै कक थाइजा थायनि

फैदेंगचें साखाम क्राय ने आगला ताबो खनालायनो तांबिति तांबितियो खनालायनो फांतुक नरगै ककथिसा थायनै फांतुक बेलाखे मखिथिं गाहाम फांतुक दालबिदाल जातंगो रमदि सिंगेना फांतुक लफुआ फांतुक गेटिं जात गुफुर फांतुक बुसुगनां फांतुक हगोगायमेनि गारो फांतुक आगर फांतुक मखिथिं रगनि बिसिं कायसा कथक जामु फांतक नो सालब्रम ब्रम नो हाथी हाबर रग मानथुइ थमगा बाय बक्सा बक्सा बर रग फांतक नो नक आरी रग कायने से नाय बिया गजा फांतक नो ताम खस जावै मा यात बेरमा बुते खाये बेरमा बुते यो बांता रोय थक रोय लाब्रा खाये हाचें बकों बाय जाखतै ते जादां रग खाय जाखे बसिक से थक आगिनि जर रग हुक तांगै जानाय रखिनके हुगो कायमानि गारो फांतकन बान्तारुइ मतम हुहु खे बेरमा बदै ख्लाइ छङै चालायमा रक नुजागो फांतकन मुइ छङै जामान गारै ब बाजार तै थाफानि हकि बाय फांतकन मुरै मजदिं जाखे बुसिक सेथ आबनि बगै फांतक रकन नक्सा नकारिनि बुकजा थाइ रग एबा बारि रग फांतकन कायमान खे जामान गारै ब हाथि रग फालै रांकि सिमिसा आजिउ युमान फायदाखो फानदाखो तामा तामा चा बालि दं गिसिसा सायमान लायानो फानदाखो केलसियाम फसफरास क्लोरिन भिटामिन सि रग अमान्थगो फानदाखनो कायना थांखे सेकां जारा मा सारग्राव तालहिं तालरं तालस्लां तालरगो हायखाबा बांग्ला बिसिनि माग फालगन बैसाग तालरगो जारानो सारिमानो फानदाखनो कायना सेकां खरसा सिक सिगिरिं एबा हुकबारनि एलएम करुनो सङै कायमान खबा तैबो हामखगो फादें गासो जरा जों खनायना हालाका तां बिदिबो फान्टोन रगै ककथै जाथायनै फादें गसं ककथोम खनालायमा बग थांलायनो अबंखा लोकरक तंक चांगते काहाम करनखे तंगै माना बागै खुवाइबा खाखस्थानि भारत बांग्लादेशनि आरि आमचाइनि बारामिटारनि बिसिङ सालब्रम हरनि दामचानि सिमि दैनि फुंनि दाम बाजारा लकरकनि थांलायसो ख्लायथनि व बि एन एस एस नैसाइनि चिथामनि सारादक चिथाम दारा केरं रायदन फेनि रिजाखा रायदाव साजाखा हास्तिनि नायमेथां बदल हास्तिनि पुलिस बदल खुवाय हांगरनि एस डि एमनि गसिजाग ग्लाय मान्जा बर' हास्ते हाफांनि सामंग थेफाजाखनाय सेबक ख्लायनाय र' हामिया नायजाग सुखना नांनाय आबहाय बेमार गोनां बर' रग अ केरं रायदब' खबजाग्लाग ओ केरं रायदो फिनजाग दङानो अ नैसाय निचु जग इंराजि बिसिनि बसकां जलाय तालनि सालचिसिनि सालमारि जरा अ रायदन राखगि

0: नरक खनाई दंग 101.6 MHz FM उज्जैन तो तीन अंक चरंग दंग नरक निबुखु खमा मन जराव सालकामा पांडव सालकामा पांडव नो तीन जुलै आंग आसंग जरा तमनी ते आबनिया गुलो हाइलो हाइ जों हायुनि खरां गजारो खलाई हायुनि खरां नि यागुलो ताबो किफली फाइफिर का हाइनो हाइ सालकामा पांडा सालकामा पांडव जराव कोक दुख फाइजाक जों थाइचो खसामन ते कोगलाम सालाई जलाई मनी तामि के चराय जराव अपसिनि बागे बेलाखिनि इम्पोर्टेन्ट आ थाइचो खसामारो हाय दिबेना हेलो
1: हेलो
0: हाँ बकुनो लाम शोगो फ़ोन कहाँ
1: हाँ बकुन बकुन माँ हाँ सिने बकुन मामा ना
0: जा
1: आई यंग बिशन वन ना हम जोली
0: आओ द बकुनो लाम शोगो
1: नहीं चुप रहो तारों ना बुश दिया समास रहो कहीं ना बात कहीं तो साले ना रहो खाली जाऊँ ता आगे इन दिनों हम क्या तो मोहाय जस्तो फाइकान के सराय रग दला इन तंग थंग जाओ ता हचो रग ताना ने निनि लेसु रो जामु रो सामु कबंग मा तंग ता गि खबा माबाय लय ए आचुक बासा थाजु खपना ने कम्पिटिशन रग लाय जा निनि दाता रग ला सागो दापि बासा थाजु खपै मा थाजु खम नै नै आचुक बासा लायनेन मे तिले पाला खे बासा नानि
0: खसा

दिवर दाम ची जरा नरक ने दिवर नुतै जरा व हाइन हाइन रक बाय कचारो नरक बाय नि कचारो किपले फैपिनै बुरी रक नि पांदा न तुई आपने यागुलो नरक खनावै तोनी चिनी आकाशवाणी आगरतलानी एफएम उज्जैन तो 6.2 मेगाहर्ट्ज ने।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
7: हा?
8: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
7: सॉरी
8: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
7: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
8: मतलब
7: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: শ্রোতা বন্ধু টিউন করে আছেন 101.6 মেগাহার্জ আকাশবাণী এফএম উজ্জয়ন্ত আর এই মুহূর্তে শিশুদের সরাসরি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আপনার বাড়ির শিশুটিকেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন ফোন করুন 2326253 আমাদের ফোন নাম্বার মোবাইল থেকে করলে অবশ্যই সামনে 03 81 দিতে হবে অর্থাৎ 03812326253 আমাদের স্টুডিওর ফোন নাম্বার অপেক্ষায় রইলাম আমি আর জে চিন্ময়
11: Da-di-da-da-ding-na.

อันนี้ครับอันนี้ดอกที่บุกซึ่งอาศึกเดือดซึ่งหาจึงมีกำลังปานดักขนาดไหนกันตาบุกซึ่งกิจฉากกนอวารุขนาดไหนนึงอันนี้ครับอันนี้ดอกที่บุกซึ่งมนตรีบุกรุกนรนมุดีหากตุนิชิกลาฮดานอหำเซจักบารัดสงใจที่ชนะบักยิ่งไต่บุบาร์ใจยาสักยิ่งได้สักทารีชามุงตังนักวอกมุงนารักฮะมียาखेलची चुकू रोजगार बनेक नि पांडा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छेबाई ककनारकना माव मंत्री बखरक अकक शाका आगतला गवर्नर हाउसमिया हरियाणानी फाइनेरंग स्मेरटो हस्तपा इंद्रसना रेड्डी नालुबाई मालाइखा कायशा भारत कहम भारत छामंग बतांगनि बिसिंगो खबजाक जुब संगम डग बेरमनि छांग बतांगनो मानदरनि फायका हरियाणानी अरंग स्रंगनाय बदल डग हस्तनी हापांगनी डिग्री कॉलेज रगो बिशी नैसाय निसिदक नैचिनी रंग बिशी ने ग्रेजुएट परिमंगो बर्तिनि सामंग ओमेतालनि साल नैचि चुगुनि सिमि चेंगानो हाकतर गनांगै पेट्रोल टाइ डीजल मरखा सालचिनि बिसिंगो ओ बाई वाय थाम पेट्रोल टाइ डीजल नि मरखमुं बांग्रि जाखा हाफांग कतरकु कबांगकु लोकरक नायमा याचकमा बागै जीबीपी रामजी केरंग नैसाय निचिबा खबजाक पुइला बिरामनि रायदा बिदि मिया कारिखा अनुकटि हांकाव रामचायनि किसासे कामचाय फेरां मानजागै कासना बागै जाय जाय खिया बिदोम जाति अनुकटि हांकनो नाकल फां मेडा जोंनो कक्साका आगतलने दिनि फुंनि खामानि तुमारि टंगमानि निजि साध्य ग्रि सेलसियास दिनै सालनि साखानि तुमारि टंगमानि थामजिब्रै डिग्री सेलसियास गानागिनि ताबुकजों

अचक जरा चाहिँ सरनै पान्दा बकरी बदल खाना लाग्या चिनी कक बरक पान्दा बिसिङटी ताउक चाहिँ लाइभ मनी कथमा तिनी नै असालो नारोइ काय नि बागे आङ लाइभ मनी कथमा छ थाङनाय आङ फाइमानि व चिनी 184 जन राजानि बिसिङ साबोटा मुसामुं खाइलांखा ते बुमुर आंनावनो गिया साइखनारिका ताउक आङ आफ्रु आर्बान हन्जरा तामुं सामुं बतानो खाइलांखा अब्रक नङनो गिया साइखनारि माने चिनी लाइभ मन कथमा एकेबार आसमालाव त कमन कक नतङ बाक्सा बाक्सा जों मानलिया जों अरो नेटको जेमा माने आबो नङनो गिया साइखनारि नै आनि खाबनि दाउटि बुकसं टिक कतार कतार रसामुं रखनालाय नै नङबाय आं बायखे अरो आं गान्दानि सिमि सानाय गान्दा रोंखा बरमि चिनि राजानि बिसिङ बेलायखेन अरो पुइलाबो खांनि न जों साइमानो चिनर बेबागै गोबांमा राजा रक दंमोनि गान्दा रोंखाखे जिसा राजानि ककनि सिमि आंखिया साइथांगोन आबन सिगां गावमा साइखनारिका ब गान्दा जेफ्रु रासिङा जाना हाजुखा बरनि जे बफा जे नाना दाबरा चुचुरक रिक लांमानि आबन तैनाय बबिनि हानतेव फलका ब कपिल नै कायसा असाय नहनि मानो ब तंग ब गोबांमा कक काहाम सामानि बागै महाराज गान्दार राजधानि त्रिभग त्रिभेगनि कायसा थाय दङ आ थायो चिनि हरनि मताय बन आशीर्वाद रुयनाय आरो ब पैला बिनि हानो सेंमानि चिनि हरनि मताय चिनि बुवा ग्रान बेलायखेन काहामके देन खोनारैनाय आरो ब जगरक खालायनाय अजागाव बिनि हानोबो थेउफुवारका जों जतन सायमोन चिनि राजा चिनि बुवा ग्राजेफ्रु तंख्रु आफ्रु मोतायर गायबरक कक सालायमानो तै मोतायर गाय गाना गिना आसुगिनो तंगु तै मोतारनि कक बानो बरकनि हारकनो बरक चालुगु हनि जों सायमोन आबो बिजाबो जे सियाकनि ककटि जों सालाय दङ चिनि मोताय हरनि मोताय जों अग्नि देवनि सायमानो बरकनि बजे नायमानि चिनि राजा गान्दार जे नायमानि आबु बेबाग न बिनि सुरिमुंन बरक फुलफिल खालायबन रोखा गान्दार ब बेलायखेन बारख कंनार गोरों दै ब जुद्धबो खालायना गोरों ब चिनि हानि बागिरथि तै पद्दानि गोनै मालायमा थायो ब अर बिनि हानो आसक्तरादि ब फुवारका

डांगरी बाई चुआओ जेपरू मूंगसा सक नांका बबे बकनो बर्णरु ममहाई धर्म बर्ण बेबकनो बतंगु आनबागी बिनी शासन कालो आहिनो बजेफ्रु देश चालुबी तंगु आफ्रु बिनी राजा रक बिनी प्रजा रक बहनो मीनालो जे तंगनाय रक जतन साधारण बर रक काहम करंखे मातंका आनबागी ब आबुनि लहंगे सराइफ्रु हैन हैब जेफ्रु बबाहिनी सिक्ला सक्का और किसा किसा के रजाक पाट पाट के आंगाबो नुनु साइखनाने बिनि बिसा चला आसेखा दृढ़ होने जाय आबुनि लखे जों दृढ़ न्यारो हैन है किया साइ माला जाय हंके आबुनु आं थाजिंग साका कायसा राजानि किहिचा बिनि कहानी सामानि यागुलो बिनि लाइफ मनि कक्थमा सामानि यागुलो आं रसाम टांगसा तानाय नक्नि बागै हाइकेनो दिनै पान्दनो जों कक सालायनाय नांबाय आंबाय हाइदिंगे दे टांगसा रसाब मुं निनि बागै आनि खाबांनि दाउक्टि बुकसं

खा मुद्यान खलाइरेगा बिने ओ मुनिनी कक बाई बिने कक नारागै बिने हानाव बेलायखनो काहाम के तनुखा तै बिने दर मरगनो बाहायनो क्वांगमा थायत लांगिनैबो तने रेखा आबुनेलो दुरमटनि बाहायनो बथा खरचा आसायखा बंगा प्रचेता आं अर सामुं खानामाय जागुलो प्रचेतानि कगनबो हाय हाय हाय नंनो सायखनानै आं टेप टेप के चिन आसा काम राजानै तो आबो साबाया आखिनि कगरनो बाक्सा सायमियानि बागै आं जास जत राजानो काहाम सामुं खायलांका आबो तो जों ओ अर नुगु अबजे नुकमानि बावनि सासन कालो बरक टाम टाम खायलांका आबो आं किसा साय दंमोनि नरुकनो दिनैनि लाइभनि कथमाव एक्चुअलि कामनको उक टंग अर दिनै सासाबादि बे आं साबाय गेला आं किया सर्ट सर्टकै साय दङ दै रसा मुख कचारक खानालायनाय आनि खामानि दाग्लि बुकसं कांके आं खरगुरिनि साखा खरग बा खरग दग खरग सिनि दग दा साइमानो किसे किसे कां नंनो साइखा आना जे तंमानि आना जे इनफर्मेसन तंमानि तामै कांके जों दाउक साइमानो चिनि रासमाला बहायनो आसे मान थग्लिया जे कताल बारसन आबो सिमिसि तंगि तंगो हेदिबा जे तंमानि आबोनो साइमालायनाय हेदा कांके फाजि टेटां सारा सामुक नंनि बागै दिनैनि पान्दावाव

अनि खपानी धाउरी बोक्छौँ हेर्न खनाइदिउँ जेन्टी पनि ककबरक पान्ड सार्जा पोइन्ट मेगा हर्ट सो लाइभ पनि कथौँ हो हनराजे इन्फर्मेसन टङमणि चिना आगिनी सिरिज दिने राजा निजे सिङ्नो बरक तामुखे सिंहासन चारु लङ्का तामुखे बरक चिनी बागै सामुङ खाइलङ्का त्यही काबिसुक बुवा गरा चिनी हाओ टङै टङमणि आङ पाइथाङ सिमे कि छ हनराजे टङमणि नङ साइखनारिका बुङ रक्सिङ पनि सङ मैतु नाराङ्गन बागि आङ कि छ जस चिनी आगिनी ककन खुर्सामणि सि आंथें सामानी हांके और दुर्मठ प्रचेतानी पर दृढ़ फायका कंगमा चीनी और टंगू आंग जन सैमाना सैमिया

आं थाजिंग सामान हिंगे अजागो पारी छत जरा सका बो बहे नो बेलेगनो जिन जे प्रजातंनार नो जिसमान बेमारक मानजाथों जिसमानो हामिया जाय आंनि दंथों आबन जरब बेलेगनो बरनो बहे नो लगे रखा जिन राजा रग बेलेगनो बखा कहम बखा कुआर बरक जे मानसाक प्रजा रग नो कहम कर तनबागी वान सुखा आपने पारिशत नि पुरे अरिजित अरिजित नि उलो आं अरिजित सामानी तक सुजित सुजित बहन महाराज सुजित बहन बेलेगनो कहम तंगनी बबो पुरब्बा से आं तक थाना पुरब्बार नि सासन कालो बीज बजेफ्रु राजा तंफ्रु आप्रु टंकसांग बेलेगन कबां टंगमानी ब राजा बै प्रजारकनो हासालके कुंडी पानो वानसुगिया बजेहुर पानो जे आगिनी जिन मुनि ऋषि क्रेदिबा जों ताबो तो आबरक नुक्ली आसे ताबखे तो थकाय मांसे आबो हायरो आव आगिनी हिंगांके मटाय बाक्सानो सों मुनि ऋषि रुकांके बरक जे सामानि न बरक जे साक्लाय माने आं बेफक न नांगु बिनि उपेटास बाय बजे साक्लाय मुनि बिसिंटिके बक्कबांगमा यज्ञ दान दक्षिणा अबयरक खलायगा अक्षय कीर्ति हिनि टंगमारक बुखलायगा तै कामा सामग्रक बुखलायगा बो बहायनो किसा गोबां अमर अंगमानि यागुलो न बेनि बसा जायखा बेनि बसान बुंखा बिबर्ण बिबर्ण बहायनो बेलेगनो धार्मिक ते काहम्बरक टंगमानि बो बहायनो बेनि बाबानि हायखेनो बेनि बसा हायखे बेनि प्रजारनो बनायो ब बिद्या बैभव बेबाग न टंगमानि गांके अर आं पारिशत अरिजित सुजित पुरब्बा विवर्ण तौ हाइन हाई विवर्ण बहाइन बेलैखे सा खामिया आंनि टंगमानि यागुल ब सालसा बे मसराय कैसा टंगो बजेफ्रु हानो याकरि थांगा मोटाय जाखा आबुनि रंखौ पुरुसेन नायनाय बेन सजला अजागौ बिनि हाइन हाय यासाक फैगा बिनि सिंहासन न पुरुसेन बहाइन बेलेगनो काहाम टंगमानि बखे बेलै मोटाय रेक्राक पन्दित क बेनि जत्न बेलेगनो ब हामजागौ तै बरम दौ बेनि प्रजारनि बागै बेलेगनो गाहाम सामुंबो बहायनो खालायमान अनुरोध जागौ आंनि खामानि दाखै बुक्स आं दुइटा जरा नरकबाय चिनि लाइभनि कथमा सानै आं दुइ खेरा जाबुं खानाय माने याखौल' आं बासानाय फायदिंखे खाथारथि रां सारा जाबुं नरनि बागै कक सालाय सालायतै केव बरिं इंगाजात किसा कक सालाय सालायतै रसामुलक खानालायनाय हायदिबा जतन कहाम करें टी आने खापी ताकटी बुक्सों।

बरगोहायनो बंनि बागै हामजागिनाय उपजुक्त से लामानै बिनि साजोग्न राजानि साक्लायमुंबाय बरनो हायनो महाराजा मेघबाय मेघबर्णबाय अजागा सुदक्षिणीन रमणीकुलनि सुदक्षिणीय बरक कायवाफ्रु अर कायसा कक दङ हायनो संस्कृति बाय अजोध्यानि कक अम अजोध्यानि कक अजोध्या मक मध्यमन शैशन्य परिवेष्टित ऋष बीर्घ सादर्श यज्ञ दशरथ स राज्ञा दशरथे नायन पुरुषेन प्रपूजित दृष्ट रोहिणी तीर्थानि प्रथान शकुंपुर अब राजरत्नाकर्णी कक अजागाओ नरक थांगिनि नायखांके नरक सानाय अर राजा दशरथनि कक्न अजोध्यानि कक्न खुर्जा साजाक कक अजागाओ बेसेक नायदि अर दङ साकायजाक दङ खुर्जाक दङ अजे स्वयंबर ख्लायमानि जागाओ आजागो देवराज इन्द्र पन्द्रफाय सकबायजाक ते आबुनो कारिब गोबांमा अ मानाबागिनि फाय सकबायजाक अजागाओ भन राजा थाङै सकैजाक जिनि आगिनि अ राजा त्रिडिपटी खरकटाम आजागा आफ्रु मेघबर्णन अपमान अंजनाय मेघबर्ण बज्रागाट आफ्रु माने फिरांकक जागै थैयो आउन परे महाराज देवबर्ण मृगा याकारिनाय बर कारणै थाङै अंखरै थांगा आबहाय कग्र कर खुर्जा जाग दङ आरो तेव कक खुर्जाय दङ जागा जेफ्रु ब फिरां कक जागैनाय बिनि लांमा चखा आबुनि उल' हाङाङके न बन नायनानि बागै बिनि गोथैनो नायनि बागै थांमानि जागुल' आजागाव हाइन हाइ टेकायसा बेलायखोन टं थगिया आंनाय बुनाय आबुनि लगे लगे महिसि होननाय कायसा टंगु ब शिशु कुमार न तलांगैनाय आरो महारानि न कायसा ककनार रेखा जे अजागा सामुं गाहाम खालायगोनखे हायनाय जिनि राजा आसायै फैफिनै नैनाय राजानि फातसाखौ थैमानि यागुल' हास्टे अभनि बेलायखोन टं गोसांग्रब बायथांगा आबुनि रोखै बिकर नहनि कायसा जिनि बुवाग्रा फाफिका ब षोल्ल बसर बयस न बिनि बयस जोंया सिनि न ब राजदरबार मासुखा बिकर्ण जेफ्रु बिनि ब प्राट बयस जोंनाय सिख्ला जानाय आफ्रु ब बिनि सामुं गाहाम खालायनायहायनो सान्ति फिरगिदि फाफिका बिनि बसाज्ला दसुमान बहायनाय थैमानि यागुल' ब समान न बहायनाय राजा ख्लायग्लां थांबिगोन हांखानायदि बोसोर कक मा कक टेटांसारा जामुं खानाय फिनाय आंनि खाबुनि दावदै बुकजों फायदिं आंगे।

0: हा छाकानी जत बरम न दुख बिरमान करी खलाई टंगन मुसुं जागो कमलापति ब आमन पुजी खान दे बिन बिरमान कागरी मान जान नै हां चेष्टा खलाई टंग जाता उन कमनानी मान यंगै थाल थाल चिनी हर हर चिनी अंगै थांका बलंगो मामा चिनी रविवार फायुकाबा आमा संगत्रा मन पुई नान दिन नै बखा बिसुंगो मुजु मान जाखा आफुरके बलं बिसुंगो न कुन खान मानै मान थुगिया फानो तब ताया नुया टंगजाओय आमन पुजी जाखा बुआ हंग्लाइनो फाटै खलाइये हासिं सानब गदै थालै खिनामै खाबाय फुबाय आमन नुंगै छुवायै दै सारदाव जगालुव खलाइ खुलुम जाखा यांग बकुबै कुबुनि ब्यांगनि जानिब बिनि पुन्दो मेमा मामा पुनि थाइबेके आमन नुगो कमलापति खाब हामजाका ताय काब काब खा नु मुनि खा लोकतान जिनखे बनव फाई सपै जाखा
1: मुराजुमा आवन अनुसार से जान तमासे आगिला हरमु सपायो ताबुला हरकुतु हरचिनी अमु सपायो
2: नंगोरा आसा दिन तखाते माया फोन कुमा ओइ बलंगो मांग लुटुक मा तंखलेर खाता
1: ए अब कय के क तरा वरम से तरा तक रता मा मुराजुमा न मुंसने खैरांग लाखा नमु न खुमु सता हाबै दिदे दिन बदला मखन से फोन मु सुलिया
2: हर हर चिने हर हर चिने माते या माने या अंगोई थके ना बना तो ताहिं को देर आने माँ भाई बोते जे की था
1: ये नमः बिरे फाइदिंग क्यों डाइजो बेटा ना नमः तो मुझे इन दस चीजों को दस तुम मुझे नमः को तो गुरु का हाँ
2: नागू ना उनका को तो का रानी माँ
0: हाय के माँ बुप्रा सब्रक लाई जागे कमलापति बुआमा तो निन्नु कुंगो हाथ तक ऐसे सुकुंग जाखे और दिनों के रविवार फायु का बा खूनी सी में कमलानो पति चाय नहीं है तंग जाओ कुंगो पुन मरुंगे थाने सीनी खना जो खात्रे आमा समझा मनो जागे कलांगो शरीर को फायु बोतंग मानी पुन नौक बिशंगो नो पुन रोंग नौक खाक जख लाई नौर जाओ लेको पुसा खलाई आमनो पूजी नानी जुगाली जाओ आमते जुगाली हुई तंग मानी जरावो पुन्नो का ताती तुम मानो हो रहे बुमा मा तो भाई शॉप आई जाओ खा
1: ओ बेजू थांग रही बा नाइक रही ओ पुन्नो का साथ ताती मसूनी तंग नाइक रहा शॉप आई क्यों बला साथ बनो ताती मसूनी हिल
2: माँ कोमला से तुम आजा नहीं बो मताइरी तंग ला
1: मताइरी वो
2: ये तुम आजा नहीं छेरे छेरे का कॉक सावो जो वालो खुलो मखलाई तो इच्छा सही तंगो
1: उमा तंग उमा कॉक ले किमा मैंना ओ मोराजुमा आनंद बताना बाकी से सकल संग थाई के ना बुला ओ मान खदी को तमा वदानी फुतु तो सादन सादै सक तंखा ओ मोरा दुमा नोर तम खला आमना से सोई दाउ लांगवा ओ मोरा दुमा बो नमन सोई दमे के नोरा अन पथना बगे ओले इन बरे मताय मुतु बन ता बुम नाच माने कि करबे केना कि करबे केना ओमो हाय ता खाय जागरा दी तु आमा सोई दम से बनवा बाहे के लाथी हरु ओइ तम भतरन खा मो नीली याकु खलो रमाने

भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित।

0: प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।

0: एक रिपोर्ट।
1: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।